बॉलीवुड दिल में जुनून है जोश भी जवा है सांसों में मेरे जलती ये शमा है dan banyak lagi dengarkan kami di Ashiq FM Moi.